0: मार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो